0: Zoom Radio, Made in Dordogne. Entre Périgueux et Bergerac, 93.6.
1: Zoom Radio.
2: Power agent
3: शुरू होना,
2: agent
3: खत्म हुई, power तो हर क्यों कहाँ से ले ली? फिर वही जवाब बोल रहा है।